बिल्कुल, उम्र ऐसी ही बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है। और अब प्रोग्राम का वक्त भी यूं ही बीत जाता है और पता नहीं चलता है। आखिरी गाने का समय आ गया है, जो कि है सुरेश नारंग, आशा नारंग, सोनाली नारंग और सैयद मसरूर की पसंद पर ना खुदा फिल्म से। तो नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपसे मैं फिर से मिलती हूँ 11:10 पर तस्वीर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.5

0: 7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure and partnerships while ensuring accountability and measurable impact. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Prime Minister Modi today said that farmers' welfare is among the government's top priorities and it is leaving no stone unturned to make their lives as easy as possible. In a series of social media posts, Mr. Modi said, "Farmers are the bedrock of the country's food security, nutrition and prosperity." The Prime Minister highlighted that initiatives such as the PM Kisan Samman Nidhi and the Crop Insurance Scheme are not only safeguarding farmers' incomes but also further strengthening the agriculture sector. Prime Minister Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace."
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर शुरू हो गया है। मैं हूं आपके साथ नीतू और आज एक ऐसी जगह की तस्वीर जहां घुमावदार सड़कों से आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिख जाएंगे। नया रंग रूप लिए झरने हैं, चमचमाती झील है। यहां आप ठंडी हवाओं के साथ साथ हरी भरी घाटियों में घूमने का मजा ले सकते हैं और आपकी रोमांच की तलाश भी यहां आकर पूरी हो सकती है। ये है अरुणाचल प्रदेश का तवांग।

माना जाता है कि तवांग का नाम तवांग मठ के नाम पर रखा गया। कि मंतत्तियों के अनुसार जब मिराक लामा लोद्रे ग्यामसो मठ बनाने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढ रहे थे तो उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था कि जहां वो ऐसा मठ बना सकें, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दिव्य शक्ति से प्रार्थना की और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनका घोड़ा गायब था। जब उसे खोजते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां उन्हें वो घोड़ा मिल गया और इसे दिव्य शक्ति का शुभ संकेत मानते हुए उन्होंने इस इलाके में रहने वाले मोनपा लोगों की मदद से यहां पर मठ बनाया जिसका नाम तवांग रखा, जिसका मतलब होता है घोड़े द्वारा चुना हुआ। तवांग में ता का अर्थ है घोड़ा और वांग का अर्थ है चुना हुआ। 10,000 फीट की ऊंचाई पर 17वीं शताब्दी में बना तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और इंडोनेशिया के बोरोबुदुर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है जो दूर से किसी किले जैसा दिखता है। आप इसका एरियल व्यू देखेंगे तो सफेद दीवारों और पीले रंग की छतों वाली ये मॉनेस्ट्री जो है वो आपको वाकई में मोह लेगी।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सौ दशमलव 1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप। और

तस्वीर में बातें हो रही हैं तवांग की। तवांग जिले में पहाड़ियों और पर्वतों की पूरी श्रृंखला है जिनकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट से लेकर 22,500 फीट तक है। इस जिले का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गौरीचैन है। गौरीचैन पीक पर चढ़ना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। इस चोटी पर चढ़ने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के महीनों के दौरान होता है। इसके अलावा एवरेस्ट जैसा ही एक शिखर है चोंगचोंगमा पर्वत शिखर और शांगफू पहाड़ियों की विशाल श्रृंखला, वो भी इसी तवांग जिले में है। इन पहाड़ियों पर सिर्फ जंगली पहाड़ और घाटियों से होकर बहने वाली नदियां हैं। यहां पर हर्बल और औषधीय पौधों के साथ साथ नीले चीड़ और ऑर्किड जैसी पेड़ों की कई प्रजातियां भी आपको मिल जाएंगी। यहां का जो वातावरण है ना, इतना प्राकृतिक है कि वहां पर जंगली जानवर और पशु पक्षियों की भरमार है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ जानवर खुलकर विचरते हैं, क्योंकि तवांग में रहने वाले मोनपा जनजाति के लोग शिकार नहीं करते। बुद्ध में आस्था रखने वाले मोनपा जनजाति के जीवन का अभिन्न अंग है मेले और त्योहार, जो कि ज्यादातर कृषि और धर्म से जुड़े हुए होते हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ और आज हम बातें कर रहे हैं तवांग की। रोमांच की तलाश है तो तवांग में सबसे

मशहूर है सेला पास, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। तवांग को ना ये शेष भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी है सेला पास, लेकिन सर्दियों में ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक सुरंग बनाई गई है जो गुवाहाटी से तवांग को जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग है। चीन भारत सीमा पर सैनिकों, हथियारों और मशीनरी को जल्दी से ले जाने में मदद करती है ये सुरंग। तवांग के पास एक ऐतिहासिक स्थल है जसवंतगढ़। 1962 के भारत चीन युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मारक का नाम उनके नाम पर रखा गया। यहां उनकी मूर्ति के अलावा भारत चीन युद्ध से संबंधित एक छोटा सा संग्रहालय है और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक भी है। 1962 के भारत चीन युद्ध से ही संबंध रखता है बुमला पास। ये उन कुछ जगहों में से है जहां ये युद्ध लड़ा गया था। भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा बुमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए यहां तक जाने के लिए तवांग में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस और भारतीय सेना से एक स्पेशल परमिट लेना होता है। बुमला पास का इलाका चुनौतीपूर्ण है, उसमें तीखे मोड़ और उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, तो जब आप जाएं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा।

तवांग का जो बहुत सारे देखने लायक वहाँ पर जगह है, लेकिन अगर तवांग में आप झरनों के पानी को गिरते हुए देखना जाएं चाहे तो फिर वहाँ आप नूरानांग झरने की यात्रा कर सकते हैं, जिसे जंग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पानी कोई 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है। नूरानांग नदी और नूरानांग जलप्रपात का नाम नूरा नाम की एक स्थानीय मोनपा लड़की के नाम पर रखा गया है, जिसे उस लड़की ने 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान महावीर चक्र से सम्मानित सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मदद की थी, लेकिन बाद में उस लड़की को चीनी सेना ने पकड़ लिया था। आपको अगर हकीकत फिल्म याद हो तो उसमें वही लड़की एक दिखाई गई है जिसका रोल वहां किया है, उसमें धर्मेंद्र के साथ है। पूरी फिल्म की जो कहानी है उसमें वो लड़की जो है नूरा नाम की लड़की वो मेन कैरेक्टर है उस फिल्म में। तो अभी हकीकत की बात हमने की है तो हकीकत कहीं

तवांग के मुख्य आकर्षणों में से एक है पेंगोंग टैंग सो झील। इसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि माधुरी दीक्षित की फिल्म कोयला के एक गाने की शूटिंग यहां पर हुई थी। ये झील अपनी क्रिस्टल क्लियर नीले पानी के लिए जानी जाती है। ये झील भी काफी ऊंचाई पर है, तो इसलिए जब भी आप जाएं तो अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, उसी तैयारी के साथ जाइएगा। वैसे तवांग में कायाकिंग और राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कामिंग नदी पर जा सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। ग्लेशियर झीलों से निकलती है ये नदी। तवांग क्षेत्र में बचे हुए जो अंतिम तिब्बती पुल हैं, उन्हीं में से एक है चकजम ब्रिज, जो कि 15वीं शताब्दी में बना प्राचीन लोहे का पुल है, और इसे देखना आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसी चीजें जो अभी बची हुई हैं, जरूरी नहीं है कल भी बची हो, तो जो बचा हुआ है उसे तो देख लेना बनता है। और इस पुल के से होकर ना आप तवांगचू नदी को पार कर सकते हैं।

तवांग जाने का पीक सीजन है मार्च से जून तक। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहारों के कारण ना तवांग का जो माहौल है वो बहुत ही हैपनिंग सा हो जाता है। दिसंबर से फरवरी के दौरान मौसम ठंडा होता है और बर्फबारी भी होती है, इसलिए पीक सीजन की तुलना में इस दौरान भीड़ कम होती है। लेकिन इस दौरान आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तवांग पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा असम के तेजपुर में सलोनीबारी हवाई अड्डा है, जो तवांग से 317 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप गाड़ी लेकर तवांग पहुंच सकते हैं।

तवांग की बातें हो रही हैं तस्वीर में, तो तवांग के जो निवासी हैं मोनपा, वो लकड़ी के शिल्प और मुखौटे बनाने में माहिर हैं। वो प्राचीन काल से ही कपड़ा खुद बुनते आए हैं। वो भेड़ पालते हैं और उन्हीं की ऊन से कालीन बुनते हैं। कागज बनाने में भी मोनपा लोग जो हैं वो माहिर हैं। उनका कागज डेपने बॉटनिकल पेपरसिया नाम की झाड़ी की छाल से बनाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से शुगुशेंग कहा जाता है। उनके बनाए कागज गुणवत्ता के मामले में बहुत ऊंचे मानकों के कहे जाते हैं। मोनपा इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। थंका कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग है, जिसे तांका या टंका भी कहते हैं। तवांग में सभी कलाओं और शिल्प में थंका पेंटिंग्स का बहुत खास स्थान है। इसके माध्यम से बौद्ध दर्शन को समझाया जाता है। इसके अलावा बैम्बू क्राफ्ट, हैंड मेकिंग, शू मेकिंग, पॉटरी, धूप बत्ती बनाने में भी यहाँ के लोग माहिर हैं।

अलविदा तो कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे जाने का समय आ गया है। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

당근. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है घर आंगन. आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी. और हम आपको शुरू में ही कार्यक्रम के शुरू में ही आपको बता देते हैं अपना ईमेल आईडी ताकि आप हमें ईमेल भेज पाएं, हमें बता पाएं कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है. fmgold@gmail.com. जी हाँ, fmgold@gmail.com. और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मन की दुनिया जितनी सीधी है उतनी ही जटिल भी है. कई बार किसी बात के चलते मन की सेहत की जड़ें ज्यादा ही हिल जाती हैं. हम बहुत तनाव ले लेते हैं. तो भावों की बिगड़ते संतुलन को साधने के लिए घर हो या बाहर हमें एक व्यवस्थित नियम अपनाना ही होगा. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहना है तो खुश रहना बहुत जरूरी है. और खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ समय निकालिए अपने लिए, अपनों के लिए.

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत धरती कहे पुकार के फिल्म से था और दिल्ली के मौसम को देखते हुए आज के ये गीत बिल्कुल सटीक है क्योंकि थोड़े थोड़े बादल हर जगह हैं और थोड़ी थोड़ी आंधी भी चल रही है और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी चल रही थी, गर्मी हो सर्दी हो या बरसात हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है और अभी चल रहा है इसका पखवाड़ा। जी हाँ, 31 मई से लेकर 14 जून तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटिन उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। आज के समय में पारंपरिक तंबाकू उत्पादों के साथ साथ ई सिगरेट और एंड्स ENDS, जी हाँ आज मैं बताऊंगी एंड्स के बारे में, ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इसका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है खासकर युवाओं में। कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं जबकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आज इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये ई सिगरेट कैसी दिखती है। ये कुछ कुछ पेन ड्राइव जैसी दिखती है, किसी को लगेगा कि मार्कर पेन है और कभी ये भी लग सकता है कि ये एक इत्र की शीशी है या बच्चे ने अगर आपके ये इस्तेमाल करा है आप सोचेंगे कोई परफ्यूम है छोटा सा। बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है और इसमें ना तो बदबू होती है ना ही धुआं होता है कि पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निकोटिन और अन्य रसायनों को भाप के रूप में शरीर में पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें वेप पेन, ई हुक्का के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, मतलब इतने फ्लेवर हैं अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मिंट और मेंथॉल जैसे ठंडे और ताजे एहसास भी हैं। फलों की बात करें तो आम, सेब, बेरी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, सब तरह के इसमें फ्लेवर्स आते हैं। डिजर्ट्स के फ्लेवर हैं, हर्बल फ्लेवर भी हैं जो लौंग के, काली मिर्च के हैं। ये भी कह सकते हैं बच्चों की हर्बल है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सेहत के लिए कोई चीज नुकसान है तो वो हर्बल कैसे हो सकती है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दें कि ई सिगरेट एंड्स शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ई सिगरेट में मौजूद निकोटिन बहुत ज्यादा नशे की लत पैदा करता है और इस पर एक बार इसकी आदत लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म में अभी आपने आशा भोंसले और मिन्नू पुरुषोत्तम को सुना। अब हम बात कर रहे थे एंस की, एंस यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसके बारे में अच्छे से जानती है कि वेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे नुकसान है इसके। एक तो लत लगना सबसे बड़ा नुकसान है कि इसकी लत लग जाती है और आदत लगने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। फेफड़ों को नुकसान है ही, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी और गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, हृदय रोग का खतरा हो सकता है, जो हमारी युवा पीढ़ी उसके दिमाग पर असर हो सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तनाव होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ता है। और सेकेंड हैंड वेप का भी बहुत खतरा है, क्योंकि जो ई सिगरेट है अगर कोई पी रहा है और आपको, तो क्योंकि धुआं दिखेगा नहीं आपको और बदबू भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है वो साथ वाला बंदा तो ले ही रहा है ना, जो साथ बैठे हैं, तो इसलिए इसको भी नकारना जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को मना कर पाए और इसके लिए जागरूक रह पाए। ये दिखने में सामान्य सिगरेट या पेन जैसी होती है, मतलब लगेगा जैसे पेन है या पेन ड्राइव है, या बहुत सुंदर सुंदर फ्लेवर्स भी आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो, इतने सुंदर शीशी और इतने सुंदर पैकिंग में आता है कि लोगों को, मतलब युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धुआं भाप देने वाले पारंपरिक डिजाइनों के विकल्प के रूप में यह आता है और इसमें बहुत सारे खतरनाक रसायन होते हैं जिससे सीधा असर होता है सेहत पर। इसके बारे में एक चीज और है कि एक एक्ट है 2019 में बनाया गया था, पैका एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। इसके तहत ई सिगरेट और सभी प्रकार के एंड्स उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में। भारत में इन्हें बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, विज्ञापन देना या अपने पास इसे रखना गैर कानूनी है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि भारत में ये गैर कानूनी है। अब स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव मैं आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर से बता देती हूं कि भले ही इसे पारंपरिक सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन आईसीएमआर यानी चिकित्सा अनुसंधान की गाइडलाइंस के अनुसार ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें मौजूद निकोटिन दिमाग को नुकसान पहुंचाता है और युवाओं को बीमार कर सकता है। इसके केमिकल फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और ये रक्तचाप और दिल की धड़कन को भी अनियंत्रित कर सकता है। इसलिए ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इन सबसे बहुत दूर रहना बहुत जरूरी है और सबको इस बारे में जागरूक रहना भी जरूरी है कि अपनी जिंदगी में हमेशा खुशियां बांटिए। ये चीजें इस्तेमाल करके बीमारियां ही बढ़ेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है।

कभी कभी। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं बहुत सारी काम की बातें। और अब बात करेंगे एक योजना की, भारत सरकार की दिव्यांग कल्याण योजना। जैसे स्वावलंबन कार्ड है, यूडीआईडी है, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है जो पूरे देश में मान्य है। इसे कहते हैं स्वावलंबन कार्ड यानी यूडीआईडी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी दिव्यांगजनों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और उन्हें

कागजी दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति दिलाना, ताकि किसी को परेशान ना होना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। सिर्फ एक कार्ड बन जाएगा तो हर जगह उनका डाटा रहेगा। इसके मुख्य लाभ और विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए कई प्रमाण पत्र प्रतियां साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में सभी आवश्यक जानकारियां डिजिटल रूप से दर्ज की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी मान्यता है इसको। ये कार्ड भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से स्वीकार्य है, इसलिए एक कार्ड आपकी बहुत सारी चीजों की मुश्किलों को कम कर देगा। इसके माध्यम से योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आती है और लाभार्थियों को भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है, बताया जा सकता है उन्हें, और उन्हें भी ट्रेस किया जा सकता है। सुगम प्रमाणीकरण भी है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और अस्पतालों में दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के त्वरित सत्यापन में मदद मिलती है। वेरिफिकेशन हो जाता है कि क्या चाहिए आपको। इस पर और भी बात करेंगे इस गीत के बाद।

रुक रुक गाड़ी चली छुक छुक छुक छुक छुक छुक मैं नोकी गाड़ी चली छुक छुक छुक छुक छुक ओ दिल वाले मत वाले तेरे दिल के स्टेशन पे गाड़ी गई रुक रुक रुक

मोम की गुड़िया, इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले को। हम बात कर रहे थे स्वावलंबन कार्ड की। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड, इससे बहुत सारे लाभ हमारे दिव्यांगजनों को मिल जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड है तो बहुत सारे उसे लाभ मिलते हैं। यात्रा में छूट मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं, शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलती है, वित्तीय सहायता भी दी जाती है। और अगर सरकार ने दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, बता दूं आपको। जी हाँ, एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आईटी, एनिमेशन, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आधुनिक और उद्योग अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण रोजगार जो है वो मिल सके। दिव्यांग सहारा योजना। इस योजना के तहत अत्याधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एकीकृत करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिसका संचालन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो शामिल हैं। तो आप स्वावलंबन आईडी कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। अब कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्रांजल पाटिल, भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला आईएएस अधिकारी। जी हाँ, बचपन में बहुत संघर्ष किया। अब प्रेरणादायक कहानियां जो होती है ना, जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह गंवा दी थी। एक स्कूल के साथी ने गलती से उनकी आंख में पेंसिल मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख खराब हो गई थी। बाद में उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई, लेकिन इस दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी की। प्रांजल ने बिना किसी कोचिंग के केवल सॉफ्टवेयर की मदद से किताबें सुनकर यूपीएससी की तैयारी की। उन्हें पहले ही प्रयास में 773वीं रैंक हासिल हुई। उन्हें भारतीय रेलवे लेखा सेवा आवंटित की गई, लेकिन रेलवे विभाग ने उनकी 100% दृष्टिहीनता का हवाला देकर उन्हें नौकरी नहीं दी। उन्होंने 2017 में फिर से कड़ी मेहनत करके 77वीं रैंक हासिल की और देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी बनी। इसलिए तो मैंने कहा कि वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। यहीं तो ये साबित होता है कि अगर मेहनत हो, लगन हो, आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रांजल पाटिल को केरल कैडर मिला। उन्हें तिरुवनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाल कर देश की सेवा शुरू की। हम सलाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को।

हम अपने साथियों से, अपनी बहनों से, क्योंकि हमारा घर आंगन जो कार्यक्रम है वो खास महिलाओं के लिए है, बार बार कहते हैं कि योग बहुत जरूरी है। हम ये भी कहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए, और समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। अब योग दिवस भी आने वाला है, तो क्यों ना अब हर बार ये सोचकर कि कल करेंगे ये ना करते हुए योग शुरू किया जाए। और योग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर और मन दोनों की इसकी आदत हो जाएगी। बहुत आसान से थोड़े से आसन में आज आपको बता रही हूं, ताड़ासन। इसे कहते हैं माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, यानी स्ट्रेचिंग करनी है आपको अपने शरीर को। नीचे पैरों से खड़े होकर, सीधे खड़े होकर, हाथों को ऊपर करके, इससे क्या होता है, शरीर का पोस्चर सुधरता है और लंबाई भी बढ़ती है, अगर बच्चे युवा कर रहे हैं तो। वृक्षासन यानी ट्री पोज, एक पैर पर सीधे खड़े हों, दूसरे पैर के तलवे को जांघ से टकराएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले जाएं। इसका जो लाभ है वो बताऊं, शरीर पर बैलेंस बना रहता है और एकाग्रता भी आती है। सुखासन यानी इजी पोज जो होता है वो है जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मानसिक टेंशन दूर होती है, मन शांत रहता है। देखिए, सांसों पर आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे योग के जरिए, आपकी बीमारियां भी दूर होंगी और आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा। भुजंगासन, कोबरा पोज कहते हैं इसको, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को छाती के पास रखकर शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं, इससे पीठ और कमर का दर्द दूर होता है। मार्जरी आसन यानी कैट काउ पोज, घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली चलती है या गायें चलती है, वैसे हो जाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे करें, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर करें गोल, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। बालासन यानी चाइल्ड पोज, घुटनों के बल बैठ जाएं। वज्रासन जिसे कहते हैं, अब आगे की ओर झुक

हुए सिर को जमीन से छुएं और हाथों को आगे फैलाएं। इसे थकान और तनाव तुरंत दूर हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात ये बता दूं कि जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। शरीर को जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करें। दर्द होने पर रुक जाएं, सांसों पर ध्यान दें। आसन करते समय सांस को रोकना नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से सांस लेना और छोड़ना है। खाली पेट करना चाहिए, योग ज्यादातर खाली पेट करना चाहिए। अगर आप खाली पेट करेंगे तो इसका फायदा होगा। या खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद योग किया जा सकता है।

राजा और रंग इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, और हमने आपको अपना ईमेल आईडी बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बातचीत एक तरफा रहे। आप हमें ईमेल भेजिए तभी तो ये बातचीत दोनों तरफ से होगी। हमारा ईमेल आईडी भी हमने आपको बताया था fmgoldgia@gmail.com। कुछ ईमेल्स हमें मिले हैं, हम पढ़ देते हैं। गौरीशंकर जी की नांगलोई से मिली है, जिन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उन्हें ई सिगरेट के बारे में भी बताना पसंद आया। संगीता पाल जी अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं। राजू अग्रवाल केशव जिला हसराहो हरियाणा से लिखते हैं। और भी बहुत सारी मेल आ रही हैं हमें। सुदर्शन मुखी साहब की मेल मिल गई है, तो आप भी मेल लिखिए। अब सुदर्शन मुखी साहब, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, और आप सब भी बताइए कि क्या चाहिए आपको कार्यक्रम में और कैसा लग रहा है हमारा ये महिलाओं का कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे बेल की। जी हाँ, गर्मी के मौसम में बेल खाना फायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं। बेल बहुत गुणकारी है।

चमत्कारी फायदे हैं इसके। पेट के रोगों के लिए तो रामबाण है। अब आयुर्वेद में बेल के पेड़, यानी बेल जैसे बेल पत्र होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, तो सभी जानते हैं। और जो बेल का जो फल होता है उसे बेल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। कब्ज, गैस, अपच और दस्त को जड़ से खत्म करता है। पका हुआ बेल का गूदा आंतों की सफाई करता है। गर्मियों में बेल को के शरबत जो है वो पिया जाता है, शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन दूर होता है, लू नहीं लगती, पेट की गर्मी को शांत करता है। बेल की पत्तियों

चौराहा फिल्म में आप ये सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज। बात चल रही थी बेल की। जी हाँ, गुणकारी और चमत्कारी बेल की। अब पाचन तंत्र में इसमें सुधार होता है, ये मैंने आपको बताया। क्रोनिक डायरिया और जो होता है ना, दस्त लग जाते हैं, वो भी ठीक करता है, कब्ज भी ठीक करता है, अगर इसे ठीक सिखाया जाए। इसके फल और पत्तों के अर्क में फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने की गजब की क्षमता होती है। अगर किसी को लगता है ना कि उसे फंगस की बीमारी है, जैसे उंगलियां फट जाती हैं, कई बार पैरों की उंगलियों में फंगस हो जाती है, तो बेल का इस्तेमाल कीजिए। सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, आंतरिक अंगों की सूजन और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो पके हुए बेल का गूदा खाएं और शाम को इसका शरबत पिएं। कच्चे बेल को आग में भूनकर या सुखाकर बनाएंगे। बेलगिरी का जो चूर्ण होता है उसे मट्ठे के साथ खाया जा सकता है तो जो दस्त होते हैं ना वो रुक जाते हैं। डायबिटीज अगर आपको है तो बेल के 4-5 ताजे पत्तों को पीसकर सुबह खाली पेट इसका रस पिए। अगर आपको गर्मी लग रही है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो पके बेल के गूदों को, जो गूदा होता है ना, उसे पानी में मैश कर लीजिए। मैश करके उसे छान लीजिए, उसमें मिश्री और भुना जीरा मिलाकर शरबत बनाइए। इसे कहते हैं बेल का ठंडा ठंडा शरबत, और वो पीजिए, पेट की गर्मी को शांत करता है। लेकिन एक चीज है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ना ही उसका शरबत पीना चाहिए। और अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप बेल ले सकते हैं। इसलिए हर चीज को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मगर ध्यान से।

शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी जिंदगी को मजबूती दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा को दे इजाजत। सुनते रहिए ये गीत।

0: வாங்கன்
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी।

0: और तीसरा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, centre and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the centre and states will play a pivotal role in realising the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union

आप सभी का आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। 1:11:04 हुए हैं और इस वक्त कलाकार बेमिसाल में भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर सत्येन बोस, जिन्होंने सिनेमा को कई बेहतरीन अतुलनीय फिल्में दी। अनेक भाषाओं में उन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया। सिनेमा की दुनिया में सत्येन बोस ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिल्मों के माध्यम से समाज को संदेश देने का उनका तरीका निराला और अनोखा रहा। बिना ट्रेनिंग उनकी पहली फिल्म और अचानक मिली शोहरत, ना कोई स्कूल ना कोई गॉडफादर, फिर भी फिल्म दर्शकों और समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म ने

दिन बोस ने अभिनय भी किया था। इस फिल्म की सफलता ने ये साबित कर दिया कि सिनेमा की समझ किताबों से नहीं संवेदनाओं से आती है। परिवर्तन यानी परिवर्तन सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि पूरे उनके करियर की नींव रही, जिसने उन्होंने बंगाली सिनेमा से हिंदी सिनेमा तक पहुंचाया। हर शैली में सहज, हर भावना पर पकड़, सत्येन बोस की यही खासियत रही। वो किसी एक जोनर में बंद कर नहीं रह पाए। हल्की फुल्की कॉमेडी से लेकर रात और दिन जैसी मनोवैज्ञानिक फिल्म तक उन्होंने हर तरह की कहानियां कही। और आज इसी महान डायरेक्टर सत्येन बोस को हम याद कर रहे हैं। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते रहे। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: जाने माने फिल्म निर्देशक सत्येन बोस, जिनके बारे में बातें साझा हो रही हैं इस वक्त आकाशवाणी गोल्ड पर 100.1। हिंदी और बंगाली, खासकर इन दोनों भाषाओं की फिल्मों का निर्देशन उनके द्वारा किया गया। 22 जनवरी 1916 को जन्म हुआ सत्येन बोस का कोलकाता में। 1941 में विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि इन्होंने हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही कला के प्रति, नाटकों की तरफ इनका जरा रुझान रहा। इसके बाद जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो कुछ वक्त तक रेलवे और बैंक की नौकरी भी इन्होंने की। जाहिर सी बात है, ज्यादा समय तक वो इन नौकरियों में नहीं रहे और जल्दी ही फिल्मी दुनिया की तरफ इन्होंने रुख किया। इनके निर्देशक एक बेहतरीन फिल्म दोस्ती का गीत आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए।

सत्येन बोस एक महान निर्देशक। फिल्मी दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो बस ऐसी ऐसी फिल्में हमें सौंपी जो फिल्मी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगर बात करें इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की तो नाम लिया जा सकता है रात और दिन, चलती कराम गाड़ी, दोस्ती और जागृति। जागृति फिल्म ने 1956 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और फिल्म दोस्ती ने 1964 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सत्येन बोस ने फिल्म की बाकायदा कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बावजूद इसके उन्होंने लीक से हटकर फिल्में बनाई। गीत सुनते हैं इनके निर्देशन में बनी इस फिल्म का और फिर बैठते हैं आगे। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। गीत पहुंच रहा है फिल्म रात और दिन से आप तक और आवाज मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर की।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहाँ पर तय हो रहा है। अंजलि है आपके साथ और बात हो रही है जाने माने फिल्म डायरेक्टर सत्येन बोस की। 1949 में इनके निर्देशन में बनी अपनी पहली ही फिल्म से सत्येन बोस मशहूर हो गए और ये फिल्म रही बांग्ला में बनी परिवर्तन। इस फिल्म का जिक्र इसलिए पूरे सफर पर होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म रही ना जिसने बहुत ज्यादा जैसे पॉपुलैरिटी हासिल की और सत्येन बोस को जैसे बोलते उनके पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमा दिए। पहली ही फिल्म और ट्रेनिंग भी इनकी कुछ नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था किसी की गाइडेंस में इन्होंने काम किया हो, किसी के असिस्टेंट बनकर इन्होंने फिल्म निर्देशन सीखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक कोरे कागज की तरह इन्होंने रच डाली अपनी ये करियर की कहानी और इनके इस फिल्म में ना इनके करियर की जो आगे का लंबा सफर था ना बहुत ही क्लियर और साफ कर दिया था। और इसी फिल्म का रीमेक इन्होंने हिंदी में बनाया जागृति नाम से। फिल्म जागृति कौन नहीं जानता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग, सभी दर्शक, सिने प्रेमी इस फिल्म से जरूर रूबरू हुए होंगे और शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। सचमुच सपने देखी होगी लगभग, इतना तो मैं कह सकती हूँ। और अपने नाम के अनुसार ही जागृति फैलाई इस फिल्म ने समाज में, बहुत ही अच्छी मर्मस्पर्शी संदेशात्मक फिल्म रही जागृति। इसका एक और गीत हम सुनते, लेकिन इनके निर्देशन में बनी बहुत सारी फिल्में हैं और वक्त भी हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता कि हम इतने बड़े डायरेक्टर, इतने मशहूर डायरेक्टर, इतने महान व्यक्तित्व को इस छोटे से समय में या छोटे से सफर में समेट ले। तो इनकी एक बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट निर्देशित फिल्म चलती का नाम गाड़ी से गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं किशोरदा और आशा भोसले की आवाज में।
1: मगर आपने तो कहा था कि, तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर नहीं कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लूं।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

महान डायरेक्टर सत्येन बोस जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त और सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। ये सफर फिलहाल तो चल ही रहा है। सत्येन बोस जिन्होंने नेशनल प्रोग्रेसिव पिक्चर्स की स्थापना की और तीन बांग्ला फिल्में बनाई। उनकी फिल्म परिवर्तन 1949 की फिल्म ये थी, जबरदस्त हिट रही। उन्होंने इस फिल्म में प्रिंसिपल शिशिर बाबू का किरदार भी निभाया था। इसके बाद वो मुंबई चले गए जहां उन्होंने पहले परिचय फिल्म बनाई और फिर 1954 में जागृति जो कि उनकी अपनी ही फिल्म परिवर्तन का रिमेक रही। इस फिल्म में अभिनेता अभी भट्टाचार्य ने नए सुपरिंटेंडेंट शेखर बाबू का रोल प्ले किया था। डायरेक्टर सत्येन बोस के निर्देशन में बनी जागृति एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई और इस फिल्म ने फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार सहित बहुत सारे दूसरे पुरस्कार भी अपने पाले में कर लिए। अपने पहली जैसे बोलते ना अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने लगभग 34 फिल्मों का निर्देशन किया और साथ ही उन्होंने एक मलयाली फिल्म जीविता समाराम का निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने काफी नाम कमाया। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी को उनकी फिल्म दोस्ती से काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी और इस फिल्म का गीत भी आप तक हमने शुरू में पहुंचाया, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। बहुत ही जैसे बोलते हैं इस फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक गीत रहे। इसी तरह से एक्ट्रेस राखी ने भी उनकी फिल्म जीवन मृत्यु से ही फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। अदाकारा नरगिस को उनकी फिल्म रात और दिन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सत्येन बोस के निर्माता ताराचंद बड़जात्या के साथ भी बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए भी उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। फिलहाल तो जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है और ये आवाजें मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की है।

महान डायरेक्टर सत्येन बोस हिंदी और बंगाली सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में रहे जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के अपने जुनून और समझ से सिनेमा को एक नई दिशा दी। रेलवे और बैंक में नौकरी करने वाले इस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारतीय सिनेमा को अमूल्य फिल्मों का वो खजाना सौंपेंगे जिन पर दशकों बाद भी चर्चा होगी। कॉलेज के दिनों में थिएटर का उनका जो जुनून था उसी ने उनमें कहानी कहने की अलख जगाई जो आगे चलकर पर्दे पर दिखाई दी। ये वो दौर रहा जब सिनेमा में आने का कोई तय रास्ता नहीं था, लेकिन सत्येन बोस ने अपने लिए रास्ता खुद बनाया। शांत स्वभाव के सत्येन बोस फिल्मी लाइमलाइट से थोड़ा दूर ही रहे, काम के प्रति ईमानदारी उनके स्वभाव का एक हिस्सा रही। ऐसे महान व्यक्तित्व सत्येन बोस को हम हमेशा ऐसे ही याद करते रहेंगे। फिर कभी उनके बारे में और ढेर सारी बातें साझा होंगी और उनकी निर्देश

मिश्रित बेहतरीन फिल्मों के गीत पहुंचेंगे आप तक। इसी के साथ चलते चलते एक बहुत ही उनकी निर्देशित फिल्म का बहुत ही जैसे बोलते हैं मेलेडियस कर्ण प्रिय सा गीत आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार की, और अंजलि इसी के साथ आपसे ले रही है इजाजत। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समा

নিতাম ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী সুখদা।

साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 11 तारीख व दिन है गुरुवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तंजिम दोषी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतु स्वर्गरी और श्री तानिंता को, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अंटू कुमार दास और श्री अमल कुमार दास, मनपा उद्घोषक श्री संजय ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन हामू। आकाशवाणी तावन से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: notification after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones. Reports.
1: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds, across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
2: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर

0: विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहल न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब

0: आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान के खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
0: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे

0: प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे, इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए चंद हिंदी भजन अनुप चलोटा से।

श्रोताओं, भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुप जलोटा से चंद हिंदी भजन, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना जारी है इन्हीं कलाकार की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुप जलोटा की आवाज में चंद हिंदी भजन। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम का आनंद लेने से पहले आइए सुनते हैं RBI द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादा जी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है। तो बैंकिंग में नहीं,
2: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले।
1: अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चलिए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत को, जिसके तहत आज आप आनंद ले सकेंगे निफालू बू के आवाज में चंद आधुनिक दिगारू मिशमी गीतों का।

श्रोताओं, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं। मिफाली बो की आवाज में चंद आधुनिक दीवारों मिश्मी गीतों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं अभी आपने आनंद लिया निफालू बो की आवाज में चंद आधुनिक दिगारों मेशमी गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम महिला मंच के तहत आज सुनिए मेजर वालिंगनो बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वैलर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस संगली लेगुम सिंफो और गैलरी गाइड मिस लुपसन छेकी से संग्रहालय और इसके महत्व पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तावंग की हिंदी उद्घोषिका दर्जी ड्रेमा।
1: नमस्कार आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनो बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहां पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहां के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लेगुम सिंफो जी से। तो सनली जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पाटिल या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन। तो इसकी विशेषता क्या है इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया ही दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है।

0: एग्जाम्पल यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीतांबर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगह से कलेक्ट, तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
1: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए, और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सनली जी, आप हम म्यूजियम के दूसरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगना बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताइए।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे, वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी थे, तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में, बिफोर रिटायरमेंट, वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे। उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खाटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे, और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े, और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम संडी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खाटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे, और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है, ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया, सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर

0: आपको मेजर खटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग देयर मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खटिंग के बारे क्या सोचते थे और टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
1: जी जी
2: जी। अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मॉन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीज़ों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
0: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्रोकपास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे आरा बनाने वाले यूटेंसिल देखे होंगे, तो फिर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 TV पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्रोकपास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्प्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसून नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मॉनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो 1985 पे, उनके मृत्यु के 5 साल पहले, वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए। तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी, तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, फिर आपको फ्लैग इन, प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा, हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही

0: सेम फीलिंग जब मेजर खटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लांट द फ्लैग बनाया है, जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते। फिर तो अभी हम टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लांट द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खटिंग जो दो ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहां पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग वही सेम 1985 इंटरव्यू की है, जहां उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग है उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे।
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए, और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करने तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में, और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है, उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21, और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है, और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम छिकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से, और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहां पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम तिपी, वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम, और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया उनका सिंबल है, और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं, तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें सनली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि छिकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में

0: आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जैसे कि 1951 में मेजर बॉब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजिली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहां पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहां पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहां पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहां पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहां पे लिखा गया है, और जितने भी हमारे यहां के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारे चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना मेजर रालिंगमा बॉब खाटिंग म्यूजियम ऑफ वेलर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस संगली लेगुम सिंफो और गैलरी गाइड मिस लुपसंग छुकी से संग्रहालय और इसके महत्व पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:52 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजरी को। लीजिए आनंद लीजिए गीत मंजरी कार्यक्रम के पहले नगमे का। रॉकस्टार फिल्म से मोहित चौहान और जावेद अली और एआर रहमान के आवाजों में। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है बरेली की बर्फी फिल्म से, जिसे शब्द, स्वर और संगीत दिया है आरको ने।

श्रुतम कार्यक्रम में गीत मंजरी का अगला नगमा प्रस्तुत है केदारनाथ फिल्म से, जिसे रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने, और इस गीत को स्वर दिया है अरिजीत सिंह और अजीज कौर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आनंद लेते हैं दे दे प्यार दे फिल्म से एक गीत का, अरिजीत सिंह के आवाज में। गीत को रचा है कुणाल वर्मा ने और संगीत से संवारा है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं, आपने आनंद लिया। एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुजैन डिमेलो की आवाजों में एक खूबसूरत से गीत का, जिसे रचा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है एआर रहमान ने। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं राजनीति फिल्म का यह नगमा, जिसे शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने, और यह गीत है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा के आवाजों में।

श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए पुष्पा द राइज फिल्म से जावेद अली की आवाज में। गीत को शब्दबद्ध किया है रकीब आलम ने और संगीतबद्ध देवी श्री प्रसाद ने।

श्रोताओं, शिवल्दी के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग के तहत आज आनंद लीजिए आर के सूर्य नारायण से वीणा वादन का। राग है हमसनादा।

वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम रागरंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। साथियों आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की। कायस नीति ने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा पर तौर पर पहचान मिली है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मीपू मोहित के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चरम पथ पर चल रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इससे सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने

0: पाया है, तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे हैं। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, तो जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सराहना की है। कहा कि इस नीति में अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य के तौर पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक गेटवे और सांस्कृतिक सीमा के तौर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने और 1080 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश भारत के रणनीतिक और विकास से जुड़े विजन का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए श्री खांडू ने इस कार्यकाल को बदलाव लाने वाले शासन, दूरदर्शी नेतृत्व और अभूतपूर्व विकास का दौर बताया। इस दौरे में अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की दिशा में को पूरी तरह से बदल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य के विकास के लिए भारत सरकार से मिले लगातार समर्थन, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने विधायक और सलाहकार मोपी मिहू के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय परिवर्तन पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से का मुलाकात की। श्री सोना ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक में राज्य की चल रही पर्यटन पहलों पर विचार विमर्श किया गया और पर्यटन के बुनियादी ढांचे, गंतव्य विकास और अरुणाचल को एक अद्वितीय और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की गई। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला स्थित सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो के सोशल वर्क विभाग में आईपीएस अधिकारी रोबिन हिबू को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कॉलेज की ओर से जारी इस प्रेक विज्ञान के मुताबिक दिल्ली पुलिस के जरिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद मंत्रालय ने 20 मई को एक आधिकारिक सूचना जारी कर ये मंजूरी दी थी। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरु मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए हैं। इसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, कैशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों में विस्फोट की सूचना मिली है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सरकार ने साइबर अपराधों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट

0: टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित की जाएगी। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में

현재 나가다 다 손흥 지능 세녀로 삼으서 나온불 나 우석 조치 배설 아슈르 세녀로 삼아서 나서

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी तवंग मैडम नमगेल अंगमो से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर सुनिए एक जरूरी संदेश। तत्पश्चात जेदुन लेरिम के तहत सुनिए चंगपुंग गांव के अमा नुरबुल हामू और साथियों से ग्युनछक सुम्पा, क्याब्रो, डोलमा, ग्यावे जप्तिन, संचुय मुनलम और मुवा मुनलम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए मन्युल विद्या निकेतन तावंग के दूसरी कक्षा के छात्रा तंजिन पेमा से हिंदी भाषा की एक कविता। विशेष प्रसारण के तहत सुनिए असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन तावंग श्रीमती सिरिंग छोडन से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर हुए एक साक्षात्कार आज शाम 7:12 पर। 7:32 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक के तहत आनंद लीजिए गायक आतिफ असलम और साथियों के आवाजों में किस्मत कनेक्शन, रामैया वस्तवैया और सत्यमेव जयते फिल्मों से चंद नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आप श्रोताओं के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8:00, जिसके तहत हम आनंद लेंगे हमराज, संजोक, सलामी और अनुराग फिल्मों से चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 12 जून 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए गांधी स्मृति और श्री विश्वकर्मा पूजा भजन। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आप आनंद ले सकेंगे जिग्मे दोर्जी और साथियों से चंद लद्दाखी लोक गीतों का कल दोपहर 3:00। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात

के अंतर्गत सुनिए दोर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवंग के पांचवी सत्र के छात्रा पेमा डोकर से अच्छे संस्कार विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत के तहत सुनिए लापता लेडीज फिल्म से अरिजीत सिंह, आयशा फिल्म से अमित त्रिवेदी, नक्श अजीज और ऐश किंग, गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन तथा मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा बसिन की आवाज में चंद नगमे कल दोपहर 3:33 पर। श्रोताओं कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत आनंद लीजिए। पाठशाला फिल्म से सलीम मर्चेंट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अबे दियोल और मारिया फर्नांडेज, बॉडीगार्ड फिल्म से ऐश किंग और क्लिंटन सेरेयो, आर राजकुमार फिल्म से अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल, यारिया फिल्म से अरिजीत सिंह, फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा, ए दिल ए मुश्किल फिल्म से अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी और नक्श अजीज, आर आर आर फिल्म से विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगंज तथा एंटरटेनमेंट फिल्म से आतिफ असलम और शालमली खोलगरे की आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 दैनिक ममता कार्यक्रम नमथर लेरिम के तहत सुनिए भारतीय गुरु आचार्य शांतिदेव की रचना अ गाइड टू द बोधिसत्वास वे ऑफ लाइफ पर आधारित शिक्षाओं की एक श्रृंखला, जिसका अनुवाद एवं प्रस्तुतिकरण किया है परम आदरणीय तुलकु तेंजिन गुरमे रिंपोचे ने। दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री लुपसंग नोरबू से कल शाम 5:30 पर। साप्ताहिक मुनपा कार्यक्रम कुंसल के तहत सुनिए असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन श्री संगे नोरबू से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर हुए एक साक्षात्कार कल शाम 5:35 पर। कल शाम 6:00 लेरिम सेडा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए शो बस्ती के आमा लुपसंग छोटन और साथियों से चंद शेदुन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए मनुल विद्या निकेतन तवंग के छात्रा तेंजिन पेमा से हिंदी भाषा की एक कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण के तहत आनंद लीजिए गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शब्दबद्ध चंद हिंदी फिल्मी नगमों का कल शाम 7:11 पर। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8:00। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: 미림 웨브 길아 제질레니글리티 미터 게딩니글리 진스카 우스 아그시바니 다왕이물 렌지는 녹득 주세 크로니카마 클로니 나노미모토 제른 내림 고소들 렌지낭 우조나 나등아당 보트보트간 미멍 워터리스 노칫 두노 상쇼닝 쿵닥쇼 주육 토카 스페셜 인텐시브 리비전 자리 고주골 종본닝 디스틱 엘렉션 오비서 점 남길왕무 시 루틴 귀야 말 미멍셜 세라나우디 사나사
1: नमस्कार टशी दिलेक आप सबको पता होगा अभी हमारे स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हमारे स्टेट में जो लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था विच इज 2006 में. SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो एक्यूरेट हों अपडेटेड हों और इंक्लूसिव बने और जो हेल्दी इलेक्टोरल रोल है वो बनाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही है फाउंडेशन एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के लिए. सो इस पूरे प्रोसेस से ये इंश्योर होगा कि जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे स्टेट में जगह जगह पे जो फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होता रहता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, शिफ्ट होते हैं, या फिर जो देखा जाता है कि कई वोटर्स एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस में एक से ज्यादा जगहों में वो इनरोल्ड होते हैं एज वोटर्स, या फिर जो वोटर्स जिनका डेथ हो चुका है या फिर जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं अपने इलेक्टोरल पार्ट से, या जो इनएलिजिबल वोटर्स कुछ केसेस में इनरोल्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल में, उन सबको क्लीन अप करके एक साफ सुथरा और हेल्दी इलेक्टोरल रोल बनाना ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का. सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अभी जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी अनाउंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसका एक टाइमलाइन भी अनाउंस किया हुआ है जिसका मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगी. इस SIR प्रोसेस में इस साल हमारा जो एक क्वालिफाइंग डेट रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो रखा है 1 जुलाई 2026. ये डेट वो डेट है जिस डेट में जब एक वोटर एलिजिबल होता है 18 इयर्स का एज अटेन करते हैं, उस डेट को मान के चलते हैं कि उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इस SIR में उनको इलेक्टोरल रोल में इनरोल किया जाएगा. इस पूरे SIR के एक्सरसाइज में प्रिपरेशन ट्रेनिंग जो होना है हमारे BLOs का, बाकी इलेक्शन ऑफिशियल्स का, जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स होते हैं SIR में उसको प्रिंट करने का जो प्रोसेस है, टाइमलाइन है, वो भी दिया गया है जो हमारा स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2026 से और वो अभी चलेगा 14 जून 2026 तक. और उसके बाद 15 जून 2026 से लेकर 14 जुलाई 2026 इस पूरे एक मंथ के पीरियड में हाउस टू हाउस विजिट्स किए जाएंगे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि वो हर घर में विजिट करके इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें और भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करें. तो एक मंथ का पीरियड है अप टू 14 जुलाई 2026. साथ ही में ये जो प्रोसेस है हमारा पोलिंग स्टेशंस को रैशनलाइज करने का भी चलेगा, तो वो भी 14 जुलाई 2026 तक हमें टाइम दिया गया है कि हम फिजिकली सारे पोलिंग स्टेशंस को वेरीफाई करें. अगर किसी केस में चेंज करने की जरूरत हो किसी पोलिंग स्टेशन को, या फिर शिफ्ट करने की जरूरत हो किसी भी रीजन से, तो वो हम या डिलीशन या एडिशन जो भी जरूरत है पोलिंग स्टेशंस का वो भी हम करेंगे 14 जुलाई 2026 तक. उसके बाद फिर 21 जुलाई 2026 को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा जिसमें एक इनिशियल कंपाइलेशन, जितना भी हमारा पूरा एक महीने का एक्सरसाइज है उसका एक कंपाइलेशन होगा पूरे वोटर्स का, और ये जो ड्राफ्ट है सभी जनरल पब्लिक को व्यू करने के

उनके रिव्यू के लिए अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद 21 जुलाई 2026 से लेकर 20 अगस्त 2026, अगेन एक महीने का पीरियड है जो दिया गया है सभी वोटर्स को अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस, कोई भी आपत्ति हो आपको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, कोई भी एंट्री में आपको ऑब्जेक्शन हो या कुछ भी चेंज या कुछ भी ऑब्जेक्शन आपको उठाना हो, एक महीने का टाइम दिया गया है सभी वोटर्स को। एक विंडो दिया गया है कि आप अपने ऑफिशियली अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करें। उसके बाद 21 जुलाई 2026 से लेकर जो हमारा पूरा पीरियड है जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए स्टार्ट हो रहा है, तब से लेकर 18 सितंबर 2026 का टाइम है, जिस पीरियड में जितने भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हमारे पास आएंगे, इलेक्शन ऑफिशियल्स के पास आएंगे, उनको हियरिंग्स करके वेरिफिकेशन फील्ड में जाके करके डिस्पोज किया जाएगा प्रॉपर हियरिंग्स के साथ। तो ये पूरा टाइम पीरियड 18 सितंबर 2026 तक का है, जब तक हियरिंग्स होंगे, वेरिफिकेशंस होंगे और क्लेम्स डिस्पोज होंगे। फिर अल्टीमेटली 22 सितंबर 2026 का डेट है जब फाइनल इलेक्टोरल रोल हमारा हम पब्लिश करेंगे। तो ये फाइनल रोल होगा जो पूरा ऑथेंटिकेटेड फ्लॉलेस एक फाइनल रोल बनेगा, जिसमें पूरा वोटर बेस फ्रीज किया जाएगा। नाउ एट द करंट स्टेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी हमारे ऑफिशियल्स का बीएलओस का ट्रेनिंग अभी चल रहा है और साथ में जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सारे हाउस होल्ड्स को, वो भी प्रिंट हो रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तवांग में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 1 लुमला, 2 तवांग एंड 3 मुक्तो, और हमारे 3 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, 3 ERO हैं हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। साथ ही साथ हमारे असिस्टेंट ERO भी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 78 पोलिंग स्टेशंस हैं और हर पोलिंग स्टेशन में एक डेडिकेटेड बूथ लेवल ऑफिसर भी है। नाउ इस पूरे हाउस टू हाउस विजिट के टाइम पे BLOs, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसलिए इस पूरे पीरियड में रिक्वेस्ट है सभी वोटर्स को, सभी एलिजिबल वोटर्स को, कि आप प्लीज हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करें और सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको दे, भरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स में। हमारे BLOs को बूथ लेवल एजेंट्स जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने असाइन किए हुए हैं, वो भी उनको अपना मदद देंगे। एक और साथ में एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूंगी कि हमारे वोटर्स डिजिटल सबमिशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी जो है वो अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जो एक ECI का पोर्टल है विच इज voters.eci.gov.in या फिर ऑफिशियल ECI नेट ऐप, इन दोनों माध्यम से भी आप अपना डिजिटल इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर कोई असिस्टेंस आपको चाहिए हो तो हमारे डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी असाइंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ERO लेवल पे भी, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ जो लास्ट SIR मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, लास्ट जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुआ था विच वॉज 2006 अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, उस SIR के जितने भी डिटेल्स हैं, जो रोल है जो उस SIR को पर्टेन करता है, उसमें उस टाइम पे जितने भी इलेक्टर्स इनरोल हुए थे उनका डिटेल भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप इन्यूमरेशन फॉर्म में भरेंगे। इनकेस अगर आप उस टाइम पे इनरोल थे या आपके कोई रिलेटिव इनरोल थे उस फॉर्म्स में, तो उनका डिटेल भी आप ECI नेट ऐप के थ्रू या फिर एक ऑल इंडिया लेवल पे जो डेटाबेस है जो voters.eci.gov.in पे है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पूरे SIR प्रोसेस में जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं भरते हैं वोटर्स, वो एलिजिबल नहीं है टू बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट रोल। तो फिर जो नए वोटर्स हैं या जो अभी अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, वो एज नॉर्मली आप करते हैं जो फॉर्म 6 भर सकते हैं आप, वो अभी भी ओपन है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं अलॉन्ग विद अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देंगे ड्यूरिंग दिस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 18 सितंबर 2026 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड तक अपना एक फॉर्म 6 भर के डिक्लेरेशन फॉर्म देकर भी आप अपने आप को ड्राफ्ट पूरे इलेक्टोरल रोल में इनरोल कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म्स सबमिट करने के बाद जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 21 जुलाई 2026 में, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 20 अगस्त 2026 तक अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, जिसका फिर ड्यू हियरिंग्स और वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे बाय द इलेक्शन ऑफिशियल्स, और फाइनल फॉर्मल हियरिंग और डिस्पोजल हर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पे होके 18 सितंबर तक चलेगा ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली फिर एक फाइनल इलेक्ट्रॉन

0: ओरल रोल पब्लिश होगा। और इस पूरे हियरिंग्स के पीरियड के दौरान सभी इलेक्टर्स जिनको भी नोटिस मिलते हैं किसी भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के रिसीव होने पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रेजेंट हो, ड्यूली प्रेजेंट हो पूरे हियरिंग प्रोसेस में, और कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाएगा वो आप लेकर आइए, हियरिंग में प्रेजेंट रहिए ताकि ये प्रोसेस हम स्मूथली कंप्लीट कर पाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसका भी डिटेल जो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव बीएलओस द्वारा, उसमें पूरा मेंशन है कि आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना पड़ेगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता भी देती हूँ। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आपका कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकता है, कोई पेंशनर हो सकते हैं आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या स्टेट गवर्नमेंट के या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, उसका आइडेंटिटी कार्ड आप ले सकते हैं या कोई पेंशन कार्ड ले सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पासपोर्ट हो गया आपका, या आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू इशूड है, या कोई पीआरसी सर्टिफिकेट आपका हो गया विच इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट विच इज एप्लीकेबल इन सर्टेन एरियाज, या एसटी सर्टिफिकेट हो गया आपका, एनआरसी जो कुछ स्टेट्स में अभी आपके एप्लीकेबल है, या कोई लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हो गया विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, या फिर आपका आधार कार्ड। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ आधार कार्ड कमीशन ने कुछ डायरेक्शंस भी इशू किए हैं, और इस रिस्पेक्ट में मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आधार को आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे माना जाएगा, बट आधार आपके रेजिडेंस का प्रूफ नहीं होगा और ना ही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसका डिटेल आपको जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें भी पूरा उसका लिस्टेड है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। साथ ही मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि इन लाइन विद दिस एंटायर एसआईआर प्रोसेस, जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी हमने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे ERO's ने अपने अपने लेवल पे मीटिंग्स भी कंडक्ट हम कर चुके हैं विद पॉलिटिकल पार्टीज, और साथ में हमारे जितने भी BLOs हैं या उनके पॉलिटिकल पार्टीज के एंड पे जो जितने भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग इम्पार्ट कर चुके हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस एंटायर ब्रीफिंग में बस वंस अगेन ये आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पूरे SIR प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए। हमारे जितने भी BLOs हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं जो फील्ड वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रहे हैं, अलग अलग एसोसिएटेड एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं SIR के साथ, उनको अपना प्लीज आप फुल सपोर्ट एक्सटेंड करिए। और साथ ही में हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है एंड कम्युनिटी लीडर्स हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और हमारे ऑफिशियल्स को ये एक्सरसाइज प्रोडक्टिवली कंक्लूड करने में फुल सपोर्ट जितना पॉसिबल हो सके प्लीज एक्सटेंड करिए। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज फुली कमिटेड टू इंश्योरिंग कि ये पूरा प्रोसेस स्मूथली, प्रोडक्टिवली और क्लीनली कंडक्ट हो, ताकि अल्टीमेटली वी हैव अ वेरी हेल्दी एंड क्लीन इलेक्टोरल रोल जो एक बेडरॉक बन सके हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने में। थैंक यू सो मच। तुझे
1: लंगी ना था ngatang bot pot kan mimang waterless no chit tuno sangsho ning kung daksho chuyuk toka special intensive revision chale gotsku kor zongpon ning district election officer jam namgil angmu si rungtin gyuya mar myongshal sera nangu disa nangbur lanyana da uzuk chuche zangpung yuik ama norbul amu si kriso gyunjak sumpa gyabro dolma gyawe jabdan samjimunlam ning ngowa sanasa.

0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट बेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें तीन भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।

0: कर जब थककर वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता कर चिला पिला आराम दिलाकर नहीं ताजगी देता अगर धन्यवाद।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना मुन्नन विद्या निकेतन तावंग के दूसरी कक्षा की छात्रा तेंजिन पेमा से हिंदी भाषा में एक कविता। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:11 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं प्रस्तुत है विशेष प्रसारण। आज के इस विशेष प्रसारण के तहत सुनिए असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन तवांग श्रीमती चिरिंग चोरिन से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दोजी ड्रोमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवांग से प्रसारित विशेष कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जागरूक मतदाता। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग समय समय पर SIR की अभियान चलाता है। तो इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन तवांग डिस्ट्रिक्ट श्रीमती चिरिंग चरण जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताइए कि SIR क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इस दौरान क्या क्या होंगे।
3: SIR जैसे आपने कहा
2: जी,
3: SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
2: जी
3: हमारा हुआ था पिछली बार हमारे अरुणाचल स्टेट के लिए 2006 को। अभी ये है क्या एग्जैक्टली?
2: हाँ जी,
3: तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, हमारा जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि हमारा वोटर लिस्ट, उसे हम हर साल रिवाइज करते हैं। लेकिन जो बाकी साल हम रिविजन होता है हमारा सिर्फ माइनर अपडेशन होता है उस दौरान, लेकिन इस बार जो होगा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान इंटेंसिवली रिवाइज किया जाएगा हमारे एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट को, जिसके तहत हमारी जो BLOs हैं वो हर घर जाकर ना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हमने पहले कभी रिसीव किया था, बल्कि हर वो एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स जो हमारी सूची में है अभी, उनका वेरिफिकेशन करेंगे घर घर जाकर। तो यही मेन डिफरेंस है। हमारा ऑब्जेक्टिव SIR का यही है, कोई भी एलिजिबल जो वोटर्स है वो नहीं छूटना चाहिए, और अगर कोई इनएलिजिबल वोटर्स है तो वो हमारे रोल में नहीं होना चाहिए।
2: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में आखिरी बार 2006
3: को हुआ था। 2006
2: तो इस दौरान जो मतदाता है तो उनको विशेष रूप से कौन सी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और यह अभियान जो है हमारे तवांग में, अगर हम तवांग की बात करें तो यहाँ पर कब से चलने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं?
3: तो मैं पहले आपको शेड्यूल बता देती हूँ इसका। सबसे पहले तो क्वालिफाइंग डेट हमारे SIR का, उसे 1 जुलाई 2026 को लिया जा रहा है। जो हमारा जो तैयारी है ट्रेनिंग, हमारा फॉर्म्स का प्रिंटिंग और अन्य जो तैयारी है, शेड्यूल रहा है 5 जून से लेके 14 जून को। इस हिसाब से काफी सारी ट्रेनिंग हुए हैं हमारे BLOs, हमारे जो BLAs है, और हमारे जितने इलेक्शन फंक्शनरीज है, काफी सारी ट्रेनिंग इम्पार्ट हो चुका है और साथ ही में अभी भी जारी है। और जहां तक प्रिंटिंग की बात है एनुमरेशन फॉर्म्स का, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने 100% अचीव कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक। इस दौरान हमारे BLOs हाउस टू हाउस जाएंगे। हमारे जो एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स है एज ऑन डेट, उनको वो घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म्स देंगे और साथ ही में उनका कलेक्शन भी होगा। उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, उसका डेट दिया गया है 14 जुलाई 2026 को। फिर हाउस टू हाउस विजिट के दौरान जो एनुमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट किया गया है उसे कंपाइल करके पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जिसका पब्लिकेशन होगा 21 जुलाई 2026 को। और इस रोल को हमारे जितने पब्लिक है उनको भी हम पब्लिसाइज करेंगे, ताकि उसे देखकर किसी को भी अगर कुछ एडिशन कराना हो, कुछ चेंजेस कराना हो, तो उस हिसाब से वो अपना एप्लीकेशंस दे पाए। फिर उसके बाद आता है हमारा पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, उसका पीरियड रहेगा 21 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026 के बीच। अगर कोई चाहता है कि किसी का इंक्लूजन हो, कोई एलिजिबल वोटर्स रह गया है, या फिर कोई इन एलिजिबल वोटर्स है जिसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, उनका डिलीशन के लिए, या फिर किसी को अगर कुछ चेंजेस कराना हो, कुछ करेक्शन कराना हो, किसी का अगर शिफ्टिंग हो, तो ये सब केसेस को इस पीरियड के दौरान लिया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है नोटिस फेज, वो रहेगा 21 जुलाई 2026 से लेकर

0: के 18/9/2026 के बीच, यानी कि 21 जुलाई 2026 से 18 सितंबर 2026 के बीच, इस दौरान जितना हमें एप्लीकेशन फॉर्म्स मिला है या फिर जिनका ड्राफ्ट रूल में नाम आया है लेकिन कुछ अगर डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है तो उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और साथ ही में हियरिंग भी होगा, उन्हें पर्सनली हम बुलाएंगे और हमारे जो रिस्पेक्टिव ERO हैं एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे हियरिंग करने के बाद में। उसके बाद हमारा फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल रहेगा, वो उनका डेट दिया गया है 22 सितंबर 2026 को।
1: जैसे कि आपने कहा SIR अभियान जो है विशेष रूप से एग्जिस्टिंग वोटर्स यानी वर्तमान में जो है मतदाताएं तो उनके लिए काम करेंगे, तो मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर्स जब हमारे घर पर आते हैं तो उनको कौन सी दस्तावेज अपने ओर से प्रदान करने होंगे?
0: जो एनुमेरेशन फॉर्म्स BLOs जो घर घर जाकर देंगे और जो कोई भी एनुमेरेशन फॉर्म्स फिल करके हमें देता है उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा।
1: जी, जी, जी।
0: और ये बहुत इम्पोर्टेंट कि जो अगर कोई रह जाता है, अगर कोई फॉर सम रीजन नहीं दे पा रहा है तो उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा।
1: जी, जी।
0: और जहाँ तक ड्राफ्ट लिस्ट की बात है, अगर किसी का नाम आ भी जाता है तो उसमें हम ये चेक करेंगे जो डिटेल्स उन्होंने दिया है एनुमरेशन फॉर्म में, उसमें जो लास्ट SIR हुआ था 2006 को उसका भी डिटेल्स मांगा गया है। तो अगर जिन किसी का भी नाम उस दौरान था और उसका प्रॉपर मैपिंग हो जाता है, अगर ऑब्जेक्शन कुछ नहीं आता है, उनको हम हियरिंग के दौरान नहीं बुलाएंगे।
1: जी, जी।
0: और उनको एक्सेप्ट फॉर अ रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ, उनको दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट्स हम नहीं मांगा जाएगा। लेकिन वो इलेक्टर्स जिनका नाम आया है एनुमरेशन फॉर्म में, उनका मैप नहीं हो पाया है फॉर सम रीजन, फर्स्ट रीजन हो सकता है 2006 के दौरान उनका वो एनरोल्ड ही नहीं थे, तो उन्हें हम नोटिस देकर उन्हें हम बुलाएंगे हियरिंग के लिए। और साथ ही में और भी इलेक्टर्स रहेंगे जिन्होंने अपना डिटेल दिया है, जो एनरोल्ड भी थे 2006 को, लेकिन उनका जो डिटेल्स है मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होगा, सिस्टम भी वेरीफाई करेगा और हम भी देखेंगे। तो अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया जाता है कि उन्होंने जो लास्ट SIR का जो डिटेल्स दिया था उससे अगर मैप नहीं हो रहा है तो उनको भी हम हियरिंग के दौरान नोटिस देकर बुलाएंगे। किस व्यक्ति से कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा?
1: जी, जी।
0: सबसे पहले है जिसका नाम 2006 वोटर लिस्ट में नहीं था लेकिन अभी वो एज इलेक्टर्स एनरोल्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स को बनाया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति से मांगा जाएगा, वो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके हिसाब से तैयार किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर हमारे देश में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें बाई बर्थ इंडियन सिटीजन माना जाएगा और इस पीरियड के दौरान कोई भी पेरेंटल कंडीशन नहीं है। लेकिन 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म हुआ है उनका, लेकिन सिटीजनशिप इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उनका जो पेरेंट्स है दोनों में से एक इंडियन सिटीजन उन्हें होना है। और जहां तक ऐसे लोग, कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 या फिर उसके बाद हुआ हो इंडिया में, तो ऐसा केसेस में ये मैंडेटरी है सिटीजनशिप बाय बर्थ के लिए उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो। तो इसी को बेस करके जो डॉक्यूमेंट्स है उसे तैयार किया गया है। अगर कोई 1 जुलाई 1987 के पहले अगर पैदा हो, अभी वो एज इलेक्टर एनरोल्ड है, लेकिन अगर 2006 में अगर उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसे अपना सेल्फ का कुछ डॉक्यूमेंट जो उसके डेट ऑफ बर्थ और उसके प्लेस ऑफ बर्थ को प्रूफ करता हो। फिर दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर पैदा हुआ है, तो क्योंकि इसमें पेरेंटल कंडीशन था तो इसीलिए उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने मदर या फादर जो इंडियन सिटीजन है उनका डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ देना होगा। जिनका जन्म हुआ है 2 दिसंबर 2004 को, क्योंकि इसमें पेरेंटल कंडीशन था कि मदर एंड फादर दोनों को इंडियन सिटीजन होना है, तो उस व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसे अपने मदर एंड फादर दोनों का डॉक्यूमेंट भी देना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? कोई भी आई कार्ड या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो रेगुलर एम्प्लॉय या फिर पेंशनर को हमारे सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया है, इसे हम ले पाएंगे। फिर दूसरा है कुछ ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो हमारे गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC उनसे इशू हुआ हो प्रायर टू 1/7/1987। फिर कहता है बर्थ सर्टिफिकेट जिसे इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, फिर पासपोर्ट, फिर है हमारा मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, PRC, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, OBC और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जहां कहीं भी ये लागू है, और ऐसा फैमिली रजिस्टर जिसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंटेन करते हैं अंडर एनी स्टैट्यूटरी

0: एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन लैंड और हमारा जो हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से इशू हुआ हो उसे भी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर में शामिल किया गया है. लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताया दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव. इसके बावजूद भी अगर ड्यूरिंग हियरिंग ईआरओ को अगर फील होता है कि इन ऑर्डर टू प्रूव द पर्सन आइडेंटिटी और प्लेस ऑफ रेसिडेंस और बर्थ ना उसका एज या फिर उसका जो रेसिडेंस का जो प्रूफ हो या फिर खुद के आइडेंटिटी के लिए भी अगर इसके ऊपर भी अगर ईआरओ को लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मंगा सकता है.
1: जी जी जी, मतदाता सूची को और सटीक बनाने के लिए मतदाताओं को उनके जन्म तिथि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है जहां पर उनको यानी मतदाताओं को अपने जन्म तिथि के हिसाब से अपने दस्तावेज प्रदान करने होंगे.
0: जी, और ये मैंने आपको बताया ये है एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स के बारे में. अदर देन एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है. तो इस दौरान अगर कुछ ऐसे एलिजिबल वोटर्स हैं जिनका कुछ कारण से वो लेफ्ट आउट हो गए थे, उन्होंने कभी एनरोल ही नहीं किया या फिर ऐसे भी एलिजिबल एज पहुंच चुके हैं नए वोटर्स, तो वो लोग भी अपना इंक्लूजन के लिए एप्लीकेशंस देंगे. और साथ ही में किसी का अगर कुछ ऑब्जेक्शंस है और चेंजेस के लिए भी एप्लीकेशंस मिलेगा, उस एप्लीकेशंस के लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा. और जो फॉर्म 6 रहेगा इंक्लूजन के लिए, तो SIR के दौरान ये मैंडेटरी है कि अलोंग विद फॉर्म 6 यानी कि फॉर्म फॉर इंक्लूजन जो नया हमारा वोटर्स है उन्हें इंक्लूड करने के लिए और साथ ही में अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसमें भी इन दो केसेस में इन एडिशन टू दी डॉक्यूमेंट्स एंड दी एप्लीकेशन फॉर्म्स डिक्लेरेशन फॉर्म को भी हम लेंगे उन लोगों से.
1: जी, यानी जो अभी 18 साल के हुए हैं जो पहली बार मतदाता सूची में अपने नाम शामिल कराने जा रहे हैं उनके लिए भी SIR के अंतर्गत प्रावधान किया गया है. जैसे कि आपने कहा बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है घर घर जाएंगे लोगों के, तो उस दौरान अगर वो जब घर जाते हैं किसी के तो वहाँ पर अगर कोई नहीं मिलते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर फिर मतदाता घर पर होंगे तो फिर मतदाता की ओर से क्या सहायता कर सकते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स के काम को और आसान कराने के लिए?
0: देखिए, SIR का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा एलिजिबल वोटर्स है, कोई भी एलिजिबल वोटर्स लेफ्ट आउट नहीं होना है. जो कोई भी इन एलिजिबल वोटर्स है वो हमारे रोल में उनका नाम नहीं होना है. इसी को लेके हमारे BLOs जो आपने पूछा कि अगर जब वो घर जाते हैं कि अगर कोई नहीं मिलता है तो क्या है, इसमें ECI के तहत हमें जो गाइडलाइंस मिला है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि BLOs को मिनिमम 3 एक घर जाना है.
1: अच्छा, 3
0: अगर अगर उनका पहला 2 में ही अगर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर कलेक्शन हो जाता है तो अलग बात है. अगर वो पहली बार गया, अगर वो देखता है कि घर बंद है, कोई नहीं है, तो वो वहां पर एक नोटिस छोड़ के आएगा कि मैं आपके यहाँ आया था, हमारा SIR का प्रोसेस शुरू हो चुका है और फिर से आऊंगा आपके यहाँ पे. तो वो एक लिखकर उनके दरवाजे के वहां पे वो रखकर आएगा. तो मिनिमम एक BLO को 3 विजिट करना है.
1: अच्छा, ताकि कोई रह न जाए.
0: जी, ताकि कोई रह न जाए.
1: जी, और अक्सर सुनने में आता है कि व्यक्ति का नाम जो है कई जगहों पर दर्ज हो जाता है मतदाता सूची में, और जो मृत मतदाताओं के नाम जो है पूरी तरह से सूची से नहीं हटाया गया हो अब तक, या फिर ऐसे कई फर्जी भी होते हैं.
0: Yes,
1: तो SIR ऐसी समस्याओं के समाधान में क्या मदद करेगा?
0: जी, जो हमारा पीरियड रहेगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने का, उस दौरान अगर किसी को लगता है कि किसी का नाम गलत तरीके से यहाँ पे है, वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं. ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं. और बहुत सारा ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति गुजर चुका है लेकिन किसी ने जानकर भी हमें नहीं बताया है या फिर जी उन्हें आइडिया नहीं होता है, तो उस कारणवश भी बहुत सारे लोग अप्रोच नहीं करते हैं. तो उनके लिए भी फॉर्म ऑफ डिलीशन जो ऑब्जेक्शन मैं बोल रही हूँ ना, उसका प्रावधान है. वो रख सकते हैं
1: जी
0: कि अगर किसी का नाम डिलीट करना हो तो वो फॉर्म भर के, लेकिन उसे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन डिलीट नहीं किया जाएगा. उसका प्रॉपर हियरिंग होगा, उन लोगों के पास में नोटिस जो रिस्पेक्टिव ERO से वो इशू करेंगे, उन्हें हम एक दिन बुलाएंगे हियरिंग के दौरान, और उसके बाद में ही ERO डिसाइड करेगा कि उनका नाम रहना है या फिर हटाना है.
1: इस अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं BLAs, उनकी क्या भूमिका होती है इस पूरी प्रक्रिया में?
0: SIR में उनका भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है. जो हमारा इनिशियल फेज है, तैयारी वाला फेज, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग जो अभी चल रहा है, इस दौरान हमारे DO मैडम ने हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ में एक मीटिंग इनिशियली कराया था जब अनाउंस हुआ था हमारा SIR. तो उस दौरान भी मैडम की तरफ से ये रिक्वेस्ट गया है कि जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट नहीं हुआ है तो उसे वो अपॉइंट करें, और साथ में उनका ट्रेनिंग

0: कुछ जगह हो चुका है
1: जी
0: और
1: जी
0: हमारा टू तवांग कल शेड्यूल्ड है। जहां तक बीएलएस की बात है तो वो लोग हमारे जो बीएलओस है बूथ लेवल ऑफिसर्स उनको असिस्ट करेंगे हाउस टू हाउस एनुमरेशन के दौरान। बीएलएस जो है वो पर डे 50 फॉर्म्स तक जमा दे सकता है, लेकिन फॉर्म्स के साथ में वो जब जमा देंगे तो उनके साथ में उसे एक अंडरटेकिंग भी साथ में देना पड़ता है कि उसने भी वेरीफाई किया है और हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसे आगे बढ़ाने से पहले दोबारा वेरीफाई करेंगे। 50 फॉर्म्स पर डे ये है जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। उसके पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद एनुमरेशन फॉर्म का तो बात नहीं रहेगा ड्यूरिंग दैट टाइम। जो हमारा फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 है इंक्लूजन डिलीशन और चेंजेस के लिए, उसमें भी वो कॉन्ट्रीब्यूट योगदान दे सकते हैं। पर डे वो लोग 10 फॉर्म्स तक जमा दे सकते हैं अलॉन्ग विद दी डिक्लेरेशन और साथ ही में उसका फिर से वेरीफाई किया जाएगा उसे हमारे बीएलओस द्वारा।
1: और इस अभियान के दौरान कई सारे वरिष्ठ नागरिक होंगे, दिव्यांग मतदाताओं होंगे, तो उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई?
0: हमारे बीएलओस तो है ही, वो घर घर जाएंगे। किसी को भी मुश्किल होता है फॉर्म फिलअप करने में उनको असिस्टेंस हमारे बीएलओस देंगे और साथ ही में हमारे जो बूथ लेवल एजेंट्स है वो भी बीएलओस के साथ में रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई पोलिंग स्टेशन में जो आपने कहा कि हमारे जो ओल्ड एज ऐसा केसेस अगर ज्यादा है जिन्हें हमारे बीएलओस का जो असिस्टेंस है प्रॉपर से नहीं हो पा रहा है, मैनेज अगर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस हम लोग वॉलंटियर्स भी डिप्लॉय करेंगे।
1: अगर हम तवांग के बारे में चर्चा करें तो तवांग में बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं, तो वहां पर किस तरह से प्रावधान किया जा रहा है?
0: देखिए हमारे यहाँ पे तीन ECs है, 1 लुमला, 2 तवांग एंड 3 मोक्तो, और ये तीनों जगह में हमारा अपना अपना ERO है। तो जहां तक चैलेंजेस की बात है हमारे रूरल एरियाज में, तो एक जैसे आपने कहा कनेक्टिविटी का काफी इशू रहता है। तो हमारे तीनों ये ERO लेवल में हम लोगों ने कंट्रोल रूम सेटअप किया है। जो कोई भी हमारा BLO, क्योंकि एक बार वो एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर ले हमारे इलेक्टर्स से तो उसके बाद उसे अपलोड भी करना होता है। अपलोडिंग के लिए जहां कहीं भी अगर उन्हें प्रॉब्लम फेस अगर करना पड़ रहा है कनेक्टिविटी इशू के कारण, तो उसके लिए ये स्पेशल कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा हमारे ERO द्वारा, जहाँ पर वो आकर अपलोडिंग कर सके।
1: जी जी जी। SIR अभियान जो है यहाँ पर आने वाले सितंबर माह तक चलेंगे, लेकिन उस दौरान अब ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ एक साथ रहते हैं, तो कोई काम से बाहर रहते हैं तो कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: अच्छा, ये जो हमारा शेड्यूल है वैसे है पब्लिकेशन फाइनल 22 सितंबर तक 2026, लेकिन जो हमारा हाउस टू हाउस विजिट है जो रहेगा बीएलओस का, जिस दौरान हमें एनुमरेशन फॉर्म्स भी हमारे इलेक्टर से दोबारा कलेक्ट करना है, तो उसका विंडो पीरियड सिर्फ 15 जून 2026 से लेके 14 जुलाई तक ही है। ऐसे केसेस जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो फिलहाल बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ लामास जो बाहर कॉनपास में है, ऐसे कोई भी फॉर एनी रीजन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, हमारा जो फॉर्म है उसे घर का कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर रिलेशनशिप मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे, उनके बिहाफ में फॉर्म फिल करके दे सकता है।
1: जी, जी, जी।
0: फिर इसके साथ ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल किया हुआ है,
1: भी कर सकते जी हाँ, हाँ, रहे होंगे।
0: हाँ, यस, कोई अगर बाहर है तो जो ये एनुमरेशन फॉर्म है उसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जमा दे सकता है। जो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन बीएलओस के पास में आएगा उसका फिर से वेरिफिकेशन होगा, आगे प्रोसेस रहेगा। और जहाँ तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात है, आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमारा कोई भी इलेक्टर्स अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना एनुमरेशन फॉर्म अगर जमा देना चाहता है तो वो voters.eci.gov.in के थ्रू या फिर हमारा ऑफिशियल ECI नेट ऐप जो है उसके थ्रू ये सबमिशन कर सकता है। और साथ ही में जो हमारा एनुमरेशन फॉर्म में पिछले SIR का भी डिटेल मांगा गया है, बहुत सारे इलेक्टर्स को याद शायद रहेगा भी नहीं कि उनका उस दौरान वो कौन से पार्ट में थे, या फिर देयर माइट बी सम अदर चेंजेस ऑल्सो, तो ये ECI नेट ऐप के थ्रू और जो बताया था आपको voters.eci.gov.in के थ्रू SIR में जहाँ पे जब वो एनरोल थे उसका डिटेल्स वो ले सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया कैसे मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने में मदद करती है। तो मैम हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं अभी आपने सुना असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन तवांग डिस्ट्रिक्ट के श्रीमती चिरिन चोरन से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही विशेष प्रसारण यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं, तो चलिए अब आरम्भ करते हैं हमारे साप्ताहिक

कार्यक्रम एक और अनेक को। इस साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक के तहत आज हम आनंद लेंगे गायक आतिफ असलम और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमों का। तो आइए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं, किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका याग्निक के आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है सईद कादरी ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया रमैया वस्तावैया से आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के आवाजों में एक गीत का, जिसे रचा है प्रिया पंचाल ने और

संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने। तो लीजिए कार्यक्रम एक और अनेक का अंतिम नगमा पेश है सत्यमेव जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार के आवाजों में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है कुमार ने और संगीतबद्ध रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया आतिफ असलम और अन्य कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के साथ ही कार्यक्रम एक और अन्य के ही समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, आपसे चंद माफ कीजिएगा, समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी भी और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर सकता है, जहां राज्य अपने विचार साझा कर सकते हैं और विकसित भारत के विजन को साकार करने में मिलकर काम कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए तय तारीख निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वर्षों से राज्य की समर्पित सेवा करने के बाद अब वे राष्ट्र स्तर पर राज्य के लोगों की आशाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्यिक विभाग ने आज भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता के साथ ईटानगर में एक निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना राज्य सरकार के व्यापार को बढ़ावा देने, व्यवसाय सुगमता में सुधार लाने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा और बाजार एकीकरण को मजबूत कर आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्थन देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राज्य भाजपा कार्यालय में लोकसभा सांसद तापिर गाव और राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस अवधि के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों, परिवर्तनकारी पहलों तथा विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए एक दशक से अधिक समय की सेवा और सुशासन को रेखांकित किया। उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यवसायियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नामसाई जिला प्रशासन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तथा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सहयोग से आज नामसाई में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले भर से उभरते उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, विद्यार्थियों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने भाग लिया। प्रारंभिक बाल शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से पान्योर जिले की याजाले स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हमारा आंगनवाड़ी हमारा गर्व विषय पर नेतृत्व कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में सभी 120 स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए आंगनवाड़ी एक्सीलेंस इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई। तवंग स्थित गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में आज प्री प्राइमरी की कक्षा 2 तक के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग तवंग की निपुण भारत पहल के अंतर्गत समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में तवंग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने हाल ही में घोषित CBSE परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। जिला कृषि कार्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र बालक द्वारा आज रायंग 1 गांव में खेत बचाओ अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 36 किसानों और महिला कृषकों ने भाग लिया। इस दौरान संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, किसान सारथी पोर्टल पंजीकरण, बीजामृत और जीवामृत के उपयोग, देशी बीजों के संरक्षण, पारंपरिक प्राकृतिक कृषि पद्धतियों तथा पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 52वीं कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्री फेस्टिवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 आज नाहरलगन के पापुम नाला स्थित द्री ग्राउंड में शुरू हुआ। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्गों की कुल 9 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबला गत विजेता सांबी क्लब और हूतो क्लब के बीच खेला गया, जिसमें सांबी क्लब ने हूतो क्लब को 2-1 से पराजित किया। और महीने भर चलने वाला 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात मेहिको सिटी में शुरू होगा। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान मेहिको का सामना ग्रुप ए के दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। इस बार का विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसमें टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। यह टूर्नामेंट आगामी 19 जुलाई तक यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा और मेहिको में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar. The news read by Priya Badu. During the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister said cooperation, dialogue and sharing should guide interactions among the states. He said Niti Aayog can play an important role as a platform for collaboration, enabling states to exchange ideas and work together towards the vision of Viksit Bharat. Mr. Modi added that empowered youth will be the driving force behind the journey towards Viksit Bharat. Tai Tagag has been elected unopposed MP to the Rajya Sabha. Congratulating him on a social media

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत को। मुक्तो बस्ती के लेकी सिरिंग छोड़तेन पेमा, सिरिंग दोजी नीमा यांगजुम, दोजी गेमू और वांगली के फरमाइशी नगमे के साथ, जो कि है हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर के आवाज में। गीत के बोल है साहिल लुधियानवी के और संगीत रवि का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा पेश है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा के फरमाइश पर। यह नगमा है संजोग फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में। गीत को शब्दबद्ध किया है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध मदन मोहन कोहली ने।

आकाशवाणी के तवंग केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं। आपके द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के तहत अभी आपने सुना नारवेल मलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र के पीएस नवखर, निर्मला नवखर और विशाल नवखर के फरमाइश पर हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में एक गीत, साहिर लुधियानवी द्वारा रचित और रवि द्वारा संगीतबद्ध। चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए सुनते हैं पजोनिया जलाऊं उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चांसोलिया द्वारा फरमाइश एक नगमा। यह नगमा है सलामी फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने। गीत को रचा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम और श्रवण ने।

श्रोताओं, अनुराग फिल्म से पेश है कार्यक्रम का अंतिम नगमा। मजनू का तिल्ला दिल्ली से कमल भालूजा, मधु भालूजा और सागर भालूजा तथा सतना मध्य प्रदेश के उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के फरमाइशों पर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को शब्द दिया है आनंद बख्शी ने और संगीत SD बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज़ @9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज। पहले मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की पुरुष जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। कहा, खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम घोषित। यशवर्धन सिंह चौहान को पुरुष और भाविका अहिरे को महिला टीम की कमान सौंपी गई। और टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 कल से इंग्लैंड

0: कैपिटल ऑफ वेल्स में शुरू होगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के साथ, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनल मेसी, महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आखिरी विश्व कप के लिए अपने दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आज से 20 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित यह संस्करण इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। और तमाम जानकारियों की इस कड़ी में आज हम उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक सबसे अधिक गोल दागे हैं। सुनिए विशेष की ये रिपोर्ट।
1: जर्मनी के स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए। 2002 और 2006 में क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। साथ ही 2014 में अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो नजारियो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। द फिनोमिनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की। 2002 विश्व कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गर्ड मुलर ने वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 विश्व कप में 10 गोल, वहीं 1974 में 4 गोल दागकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी। तीसरे पायदान पर काबिज मुलर ने यह उपलब्धि केवल 13 मुकाबलों में हासिल की थी। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 विश्व कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टन ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है। साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त चौथे पायदान पर हैं। मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं। कतर में खेला गया आखिरी विश्व कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पिछले फीफा विश्व कप के इस आखिरी विनिंग मोमेंट के साथ वापस से रिचार्ज होने को तैयार है फुटबॉल फैंस का पूरा मन, और इसी कड़ी में आज पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आइए जानते हैं विश्व कप के इस पहले मुकाबले में किस टीम का पड़ला कितना भारी है।
2: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए सभी फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं। मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। मैक्सिको सिटी के स्टेडियो एस्टेका स्टेडियम में इस मुकाबले की सीटी बजते ही फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने सामने होने के 16 साल बाद मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का मौका मिला है। मैक्सिको और साउथ अफ्रीका 5वीं बार विश्व कप में आमने सामने होंगे। मैक्सिको ने पिछले 4 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 1 मुकाबला जीता है जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान मैक्सिको का लड़ा इस मुकाबले में भारी दिखाई देता है। मैक्सिको के एरिक लीरा सेंट्रल मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए ओस्विन अपोलिस अटैक का जिम्मा संभालेंगे। मैक्सिको अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने डिसिप्लिन के लिए विश्व फुटबॉल में जाना जाता है। ऐसे में दोनों ही टीम की नजरें विश्व कप का पहला मुकाबला जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने पर होगी।

0: तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिको होम एडवांटेज का फायदा उठाता है या दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर खेल से एक अलग पहचान बनाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो आज रात 12 बजे से जोश, जज्बे और रोमांच के इस अनुभव के साथ शुरू होगा फीफा का महाकुंभ। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं एमआर अर्जुन और हरिहरन हमसाकरुणन की पुरुष जोड़ी ने भी अंतिम आठ में जगह बना ली है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
3: I won my second round and I'm very happy. I think I would like to thank all the fans out there who have been very supportive.
2: सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ही ईशा रानी बरुआ को 22-20, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चेन सू यू से होगा। वहीं तन्वी शर्मा ने भी हमवतन मालविका बंसोड को 21-13, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 17 साल की तन्वी ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को हराया था। वहीं भारत की तानिया को पोर्न पावी चोचू वोंग से 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। एमआर अर्जुन और हरिहरन हमसाकरुणन की भारतीय पुरुष जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के माइकल ओवेन और डायलन सोएत चासा को 21-17, 21-7 से हराया। मिक्स डबल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली का अभियान अपने अपने मैचों में हार के साथ समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात करते हैं एक और खेल आयोजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए देश के लिए ओलंपिक से बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है।
4: और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है।
1: तो रिफॉर्म भारत का कन्विक्शन है और इसकी साफ झलक देखने को मिलती है जब युवा खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाए मैदान पर उतरते हैं और रोज नए कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। ये दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पुरुष की अंडर 19 टीम चुनी है, जिसमें 3 एकदिवसीय मैच और 2 मल्टी डे मैच खेले जाने हैं। यशवर्धन सिंह चौहान दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मुकाबलों की महिला एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भी भारतीय महिला अंडर 19 टीम का कार्यक्रम का आज ऐलान कर दिया गया। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि महाक नरवासे दोनों प्रारूपों में टीम की उपकप्तान होंगी। श्रृंखला की शुरुआत 22 जून को चेन्नई में पहले T20 मुकाबले के साथ होगी। और जब T20 की बात छिड़ी है तो बात T20 क्रिकेट विश्व कप की भी होगी, जो कि कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और भारत की नजर 17 सालों के इतिहास में पहली बार यह खिताब जीतने पर होगी। आज हम बात करेंगे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ियों पर।
2: भारतीय टीम के पास विश्व कप में शुरुआत से लेकर अंत तक और अनुभव से लेकर युवा तक ऐसे बल्लेबाज

0: हैं जो अपने बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। हरमनप्रीत की आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी। जब भी ये जोड़ी शुरुआत से अपना स्वाभाविक खेल दिखाती है तो भारत के लिए एक बड़े स्कोर की राह पावर प्ले में ही आसान बन जाती है। उपकप्तान मंधाना तेज गति और आक्रामक शैली से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने करीब 30 के औसत से 4,293 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं युवा शेफाली भी पावर हिटर मानी जाती हैं और हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऊर्जा से भरपूर शेफाली ने अपने T20 करियर में 28 की औसत से 2,687 रन बनाए हैं। शेफाली किन इरादों से मैदान पर उतरना चाहती हैं, ये खुद उनसे सुनते हैं।
1: जब मैं कोई T20 वर्ल्ड कप खेलती हूँ तो मुझे हमेशा 2020 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, मुझे वो फाइनल याद आता है कि मुझे उस फाइनल का बदला जरूर लेना 2020 वर्ल्ड कप का, एंड होपफुली दिस टाइम वी बीट देम।
0: अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर है। इस मैच विनर खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भारत के लिए कई मुकाबले पलटे हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगभग 30 की औसत से 3,991 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टीम की बल्लेबाजी को लेकर रणनीति पर खुद कप्तान ने क्या कहा वो सुनते हैं।
2: T20 पावर प्ले के जो फर्स्ट 6 ओवर है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो यू हैव टू टारगेट रन्स इन द पावर प्ले एंड इफ यू आर बॉलिंग यू नो वी हैव टू गेट कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। वंस द पावर प्ले इज सेट उसके बाद आपका गेम चलता है, तो आई थिंक डेफिनेटली वी वांट टू रियली वर्क हार्ड लाइक हाउ वी हैव टू गो अबाउट द पावर प्ले एंड सेकंडली यू नो मिडिल ओवर आल्सो प्ले वेरी बिग रोल।
0: जेमिमा रॉड्रिग्स भी मध्य क्रम की एक मजबूत कड़ी है। तकनीकी रूप से दक्ष और प्रेशर में स्थिरता रखने की कला इस खिलाड़ी को बेहद खास बनाती है। 2025 में एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने इस खिलाड़ी की ट्रॉफी जीतने की संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।
3: Now you've tasted what it feels like to lift one World Cup. It makes you want one more and then one more and then one more. So I think the team is even more motivated and even more eager. And more than that, we saw the kind of impact it had for women's cricket in India. We just want to continue that legacy.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष से भी टीम को एक अच्छे फिनिशर का रोल अदा करने की उम्मीद होगी। ऋचा तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा सकती हैं और बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखती हैं। वे हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में भी नजर आईं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम को भारती फुलमाली दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया शर्मा से भी भरपूर उम्मीद होगी, जो टीम को एक ऐसे भरोसे के साथ साथ बल्लेबाजी में गहराई देने का भी काम करेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
4: तो भारतीय टीम किन तेवरों के साथ 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, ये इस रिपोर्ट में साफ नजर आया। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों की, जो कि 20 जून को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस समारोह में 10 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को और कोचों को उनके जीवन भर के योगदान और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.

0: दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी तो परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19

0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।